0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রে বা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যে এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে যে 12 আগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও ওড়িশা উপকূল এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন সমুদ্র উপকূলে ঝোড়ো আবহাওয়ার কারণে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার, যা বেড়ে ঘণ্টায় 60 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আজ 13 আগস্ট বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার, যা বেড়ে দমকা হাওয়ায় সর্বোচ্চ ঘণ্টায় 70 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে ঝোড়ো হাওয়ার তীব্রতা কমে আসার সম্ভাবনা। 12 আগস্ট থেকে আগামী 15 আগস্ট পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা একটু পর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার বল। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर

0: सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the Minister said the government itself is

मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरतराज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें रथी ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्या रथ हूँ। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त है, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे

0: দিল্লি থেকে প্রচারিত খবর একটু পরেই।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচকঃ পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयकं 26,2000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्य सर्वकाराः सहकारिता विकास कार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः वित्तीय साहाय्यं दातुम् अधिकृताः। एतद् अतिरिच्य संसदा संविधानस्य प्रथम अनुसूच्यां केरल इति राज्यस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधातुं केरल नाम परिवर्तन विधेयकं 26,2000 अपि स्वीकृतम्। अपरतः वैदेशिक अनुदानानाम् उपयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकम् उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् आनीतम्। वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकं 26,2000 विस्तृत सूक्ष्म परीक्षणार्थं संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् गृहमंत्री अमित शाहः लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला महोदयाय पत्रं लिखित्वा नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये प्रदर्शनकाले घटितानां विविधानां घटनानां उपरि पुनः एकवारं विस्तृत चर्चायै स्वकीयां सम्मतिं प्राकटयत्।

0: संसद परिसरे पत्रकारैः सह सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गैरातपुर अहमदाबाद खंडे चतुर्मार्गीय उपरी सेतोः निर्माणार्थं 53,00,000 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेल मंत्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मंत्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 100 मीटर मिता भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हर घर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मंडल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्ति भावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौका यात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वं एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यून चाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीये दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्ण पदकानि, एकं रजत पदकं, एकं कांस्य पदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
3: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
2: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
4: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर

0: नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड है।
1: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the NEET paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion. Indian Railways has approved 153 crore rupees construction project of a four-lane road over bridge at Gairatpur Ahmedabad section of Western Railway. Indian Railways has also approved the provision of Kavach version 4.0 on 660 kilometers of the Izzatnagar division of Northeastern Railway at an estimated cost

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह

0: के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने ये कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
3: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोच के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश पे बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
5: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके

0: असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
2: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
3: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलु मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
5: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं, मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है।

0: पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कलकत्ता हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल OBC सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। IMD प्रिडिक्स हेवी रेनफॉल इन उड़ीसा एंड गंगेटिक वेस्ट बंगाल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. The Calcutta High Court has cancelled OBC

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। और मैं हूं आज आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। तो दोस्तों किसी भी देश की तरक्की केवल उसकी ऊंची इमारतों बड़ी सड़कों या मजबूत अर्थव्यवस्था से नहीं होती। देश तब सचमुच मजबूत बनता है जब उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं शिक्षित सुरक्षित आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम होती है। कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है वही संस्कारों का निर्माण होता है और जिस देश की महिलाएं सशक्त होती है उस देश का भविष्य भी सशक्त होता है। आज रसधारा में हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने अपने साहस संघर्ष प्रतिभा और मेहनत से न केवल अपने जीवन की दिशा बदली बल्कि देश के विकास की कहानी में भी महत्वपूर्ण अध्याय जोड़े। तो आइए आज की इस विशेष प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं सशक्त महिलाएं और देश का निर्माण।

0: किचन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा
1: नॉट लिसनिंग
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती
1: ओके आई एम नॉट विद हर
0: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती
1: ओके दैट्स इट
2: दोस्तों महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है इसका अर्थ है उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार समान अवसर और सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना है क्योंकि जब महिला शिक्षित होती है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता वो अपने परिवार और अगली पीढ़ी के भविष्य को भी प्रभावित करती है यही कारण है कि भारत में भी महिला और बाल विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जाती है महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी कार्यक्रमों में शिक्षा स्वास्थ्य पोषण आर्थिक आत्मनिर्भरता और सहायता समूह महिला उद्यमता और रोजगार जैसे क्षेत्र भी शामिल है लेकिन सशक्तिकरण केवल सरकारी योजना से नहीं आता सशक्तिकरण तब आता है जब एक बेटी से कहा जाता है तुम पढ़ सकती हो जब एक माँ से कहा जाता है कि तुम अपने सपनों को भी पूरा कर सकती हो और जब एक कामकाजी महिला से कहा जाता है तुम्हारी मेहनत देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है

भारत के इतिहास में महिलाओं की भूमिका कभी छोटी नहीं रही। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम साहस और नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ साथ साहित्य और राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। चाहे वो एनी बेसेंट हो, कस्तूरबा गांधी, अरुणा असफली और असंख्य महिलाओं ने, न जाने कितनी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। इन महिलाओं ने उस दौर में आगे बढ़ने का साहस दिखाया जब महिलाओं के लिए सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में अपनी पहचान बनाना आज की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। आज की महिला उसी संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ा रही है। वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, शिक्षक है, किसान है, पुलिस अधिकारी है, सैनिक है, पायलट है, उद्यमी है, कलाकार है और प्रशासनिक अधिकारी भी। यानी महिला केवल किसी भूमिका का हिस्सा नहीं है, वो स्वयं नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव है शिक्षा। एक लड़की को शिक्षित करना केवल उसे किताबें पढ़ाना नहीं है, यह उसे अपने अधिकार समझने, सही निर्णय लेने और अपने भविष्य को आकार देने की क्षमता देता है। शिक्षा एक लड़की को वो विश्वास देती है कि मैं अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती हूँ। शिक्षित महिला अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति भी जागरूक निर्णय ले सकती है। इसलिए बेटियों की शिक्षा को केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा समझना चाहिए। और जब भारत ज्ञान और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है तब महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 9:26 और 48 सेकंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा।

प्रसव बाद बते महिला सशक्तिकरण का एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहलू की, यानी कि आर्थिक आत्मनिर्भरता। जब महिलाएं अपने श्रम से आय अर्जित करती है, व्यवसाय चलाती है, खेती करती है, नौकरी करती है या कि फिर किसी कौशल के माध्यम से अपना योगदान देती है, तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों, जब महिलाएं जो है, जब वो काम करने लग जाती है, तो वो इतना बड़ा बन जाने की कोशिश करती है कि वो पूरा परिवार ही नहीं बल्कि वो अपने पूरे समाज को भी उससे प्रभावित करती है। और साथ ही साथ हम खेल के मैदान में भी देख सकते हैं कि महिला शक्ति की शानदार कहानी। जी हाँ, जैसे कि मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ना जाने कितने खिलाड़ियों ने भारतीय खेल जगत में भी महिलाओं की क्षमता को नई पहचान दी। इन खिलाड़ियों की यात्राएं हमें बताती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, इसके पीछे होते हैं अनुशासन, संघर्ष, असफलताओं से सीखना और लगातार आगे बढ़ते रहना। क्योंकि एक लड़की जब खेल के मैदान पर उतरती है तो केवल पदक के लिए नहीं खेलती, वह उन लाखों लड़कियों के लिए रास्ता तैयार करती है जो उसे देख कर कहती है कि अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और आज भारतीय महिलाएं देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय सशस्त्र सेना

में महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार हुआ है। महिलाएं अधिकारी के रूप में सेना, नौसेना और वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रही है। यह बदलाव केवल रोजगार का बदलाव नहीं है, यह उस सोच का बदलाव है जिसमें महिलाओं की क्षमता को उनकी योग्यता के आधार पर देखा जाता है, ना कि केवल उसकी लैंगिक पहचान के आधार पर। देश की रक्षा करने वाली महिलाएं हमें यही संदेश देती है कि साहस का कोई लिंग नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, बात और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

सदस्य देश निर्माण में महिलाओं की भागीदारी तभी पूरी मानी जाएगी जब वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी समान रूप से शामिल हो। जब एक महिला ग्राम पंचायत में बैठकर

सड़क, पानी, शिक्षा, स्वच्छता या स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर निर्णय लेती है तो वो केवल अपने गांव का विकास नहीं कर रही होती, वह लोकतंत्र को मजबूत कर रही होती है। क्योंकि महिला नेतृत्व का अर्थ है संवेदनशीलता के साथ निर्णय, अनुभव के साथ नेतृत्व और समाज के व्यापक हेतु हित के लिए काम करना। तो दोस्तों, कोई महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, शिक्षित हो, लेकिन यदि वो सुरक्षित महसूस ना करे तो सशक्तिकरण अधूरा है। महिलाओं को हिंसा और भेदभाव से मुक्त वातावरण मिलना आवश्यक है, और साथ ही साथ इसमें समाज की जिम्मेदारी है कि वो हम केवल महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ना कहें, बल्कि ऐसा वातावरण भी बनाए जिसमें वे बिना डर के आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ किसी महिला की सफलता में परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बेटी को ये मत कहिए कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि कहिए तुम कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसे करियर चुनने का अवसर दीजिए, उसे अपनी पसंद का विषय पढ़ने दीजिए, उसे खेल में आगे बढ़ने दीजिए, उसे विज्ञान, तकनीक, कला या किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने दीजिए। क्योंकि कभी कभी एक परिवार का छोटा सा विश्वास किसी भी लड़की के पूरी जीवन की दिशा बदल देता है। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं को बदलने की बात नहीं है, समाज की सोच बदलना भी उतनी ही जरूरी है। बेटी और बेटे की शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। घर के काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, महिलाओं के काम को कमतर नहीं आंकना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, महिला की पहचान केवल उसकी पारिवारिक भूमिका से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, मेहनत और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 9:46 और 18 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा।

हर बेटी को शिक्षा का अधिकार देंगे, हर महिला के सम्मान की रक्षा करेंगे, महिलाओं की प्रतिभा को अवसर देंगे और उनके निर्णयों का सम्मान करेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी की अनुमति नहीं, केवल अवसर और समान अधिकार चाहिए। क्योंकि नारी केवल घर की पहचान नहीं, राष्ट्र की शक्ति है। नारी केवल परिवार की धुरी नहीं, देश की प्रगति की धुरी भी है। और जब भारत की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो भारत भी और तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसी खूबसूरत विचार के साथ दोस्तों, आज के रसधारा कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं। आज हमने बात की सशक्त महिलाएं और देश निर्माण की। याद रखिए, एक सशक्त महिला अपने लिए रास्ता बनाती है, लेकिन एक सशक्त समाज लाखों महिलाओं के लिए रास्ते खोलता है। तो आइए, महिलाओं को केवल सम्मान देने का स्वीकार करें, उन्हें अवसर दें, विश्वास दें

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में आज निजी सदस्यों के विधायी प्रस्ताव भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वो जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं हारता। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का कल शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पर की गई इस पहल का उद्देश्य गांधीनगर, कलोल और सानंद विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बच्चों को पढ़ने की आदत से जोड़ना और उन्हें गांव में ही ज्ञान के व्यापक संसाधन उपलब्ध कराना है। इस ऐप से अब तक 752 पुस्तकालय जुड़ चुके हैं, जबकि 280,000 पुस्तकों के भंडार वाले 4 बड़े पुस्तकालयों को ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ जोड़ा गया है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं और साथ ही इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च करके भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:16 और 7 सेकंड हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इशारा है आपके मनपसंद प्रोग्राम अंजुमन का और साथ है आपकी दोस्त तलत सलाहुद्दीन। और एक बार फिर आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आज़ादी का माह चल रहा है और ये लफ्ज आज़ादी अपने आप में कितनी उम्मीदें और मुस्बत सोच रखता है। यही वजह है कि अगस्त माह हर किसी की जिंदगी में गहरा असर डालता है। इसलिए अंजुमन अपने सभी सामीन को आजादी के इस महीने में आजादी की पेश की मुबारकबाद पेश करता है और देखते हैं कि आज के आईने में हमारे लिए क्या खास है। दोस्तों, आज 13 अगस्त है और आज के दिन वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे मनाया जाता है। ऊपर वाले ने इंसान के जिस्म को बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया है। हर अजू की अपनी अलहदा अहमियत है और हर किसी को भी एक पर नकारा हो जाने पर जान से हाथ धोने की नौबत आ जाती है। अस्पताल में ऐसे कई मरीज रोजाना आते हैं जो अपनों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मसला उस वक्त पेचीदा हो जाता है जब उसे इंसानी एज़ा की जरूरत पड़ जाती है। ये नहायत ही पेचीदा और हसास मरहला होता है और आसानी से कोई डोनर मिलना नहायत मुश्किल है। दोस्तों, ऐज़ा की अतिया का आलमी दिन 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये एक याद दहानी है कि ऐज़ा का अतिया सिर्फ इस बात का नहीं कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, ये इन जिंदगियों के बारे में है जो हमारे किए गए फैसले की वजह से जारी रह सकती है। इसके बावजूद खराफा तब भी रास्ते में आते हैं। लोग फर्ज कर लेते हैं कि ज़ियाबतीस, कैंसर या फिर उम्र या यहाँ तक कि पहले हार्ट अटैक या खुद बखुद मतलब है कि इन अज़ा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकते, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अक्सर ये सिर्फ सच नहीं है। डॉक्टर हर अजू हर केस का इनफरादी तौर पर जायजा लेते हैं। एक मरने वाला अतिया दहिंदा मुमकिन तौर पर कई जिंदगियां बचा सकता है। दोस्तों, हिंदुस्तान में ट्रांसप्लांट की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और ऑर्गन डोनर की तादाद में भी दिन ब दिन तेजी आ रही है। मुल्क में 2013 में 5000 ऐज़ा की पेबंदकारी की गई थी और डॉक्टर के मुताबिक 2025 तक ये तादाद 20,000 से तजावज कर सकती है। तो दोस्तों, ये था आईना जहां हमने बात की वर्ल्ड डोनर डे।

पर, ऑर्गन डोनर डे पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन, और आज दिन है जुमरात, और आज के दिन हम आपके लिए बतौर खास लाते हैं बुजुर्गों के तजुर्बात। बुजुर्गों के तजुर्बे के तहत पेश है आजादी की सुबह में आजादी की अहमियत वही सम। मौजू है आजादी की अहमियत। दोस्तों आजादी की अहमियत वही समझ सकता है जिसने वो आज महसूस की है। जब एक परिंदे को आप पिंजड़े में कैद करके रखते हैं तो किसी तरह अपने पर फैलाकर उड़ने की कोशिश करता है, कभी चोंच मारता है, कभी आवाजें निकालता है, लेकिन पिंजड़े की कैद से निकलना इतना आसान नहीं होता। और आखिरकार वो परिंदा थक हार कर मायूसी से बैठ जाता है। सिर्फ जानवर या परिंदा ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जिसे बलावजह गिरफ्त में रखा गया है वो इस तकलीफ को बखूबी समझ सकता है। यही वजह है कि 15 अगस्त 1947 की सुबह जब मुल्क गुलामी की जंजीरों से बाहर निकला तो शहरियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।

0: अपने बच्चों से कहता था, अपने विद्यार्थियों से कहता था कि आजादी एक नेमत है, गुलामी एक लानत है। इस लानत से निकालने के लिए हमारे पुरखों के, हमारे बुजुर्गों को, कुर्बानियों को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। मेरे नौजवानों, आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमारा मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी हो, तालीम के मैदान में या बुनियादी सहूलियतें हो, हर शोबे में नई उम्मीदें पैदा हो रही हैं।
1: दोस्तों, 15 अगस्त के दिन उन मुजाहिद आज़ादियों की कुर्बानियों को याद करना और इनके नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क को हकीकी तरक्की की राह पर गामजन करने का अहद करना हमारा कौमी फरीजा है। हम आज अगर आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं और हमारा खुद अपना एक अवाम दोस्त दस्तूर है, तो ये हमारे आबा अजदाद की देन है जिन्होंने हमें गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने में अपनी जानों तक की कुर्बानियाँ पेश की। एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार भारत इस मुल्क में बसने वाले हर मज़हब के नुमाइंदा अफराद की अंग्रेज़ी इस्तेमार के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है। अंग्रेज़ तजारत के बहाने अगस्त 1608 में भारत आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की मकामी आबादी को अपना महकूम बनाना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर उनकी मज़ाहमत हुई। 1668 में औरंगज़ेब आलमगीर की मुग़ल फ़ौज ने बंगाल में उन्हें मक्खियों की तरह मारा। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। 1756 में वहां के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का मुहासरा किया और अंग्रेज़ों को शिकस्त फाश दी। मैसूर में टिपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की ज़बरदस्त टक्कर दी, लेकिन कुछ हिंदुस्तानियों की मदद से अंग्रेज़ी फ़ौज ने टिपू सुल्तान को शिकस्त दे दी। 1799 में जब टिपू सुल्तान कत्ल कर दिए गए, तब अंग्रेज़ों को लगा कि उन्होंने पूरे भारत पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों के कब्ज़े से पहले हिंदुस्तान की अक्सर हिस्सों की हुक्मरानी चूँकि मुसलमानों के हाथों में थी, इसलिए हिंदुस्तान के ग़ुलाम बन जाने पर मुसलमानों को ज़्यादा तकलीफ पहुँची। और लेकिन यही सबब है कि इब्तदाई दिनों में पूरे मुल्क में आज़ादी की खातिर अंग्रेज़ों से बरसर पैकार रहे। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, बादेजा सब लोग साथ नजर आए और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में दीगर अकवाम ने भी भारत की मुकम्मल आज़ादी के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। आइए सुनते हैं ख्वाजा अहमद हुसैन ने मजीद क्या कहा।
0: हमारे नौजवान दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन बच्चों, मुल्क की तरक्की सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। हम शहरियों का भी फर्ज है कि हम कानून का एहतराम करें, अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, दूसरों के हकूक का ख्याल रखें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छे अखलाक दें। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन इख्तलाफ राय के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन मुल्क हमेशा कायम और दायम रहता है। इसलिए वतन से मोहब्बत सिर्फ कौमी दिन पर परचम लहराने या नारे लगाने का नाम नहीं। वतन से मोहब्बत ये है कि हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, अपने मुआशरे को बेहतर बनाएं, अपने मुल्क में की तरक्की में अपना हिस्सा भी उसमें डालें।
1: जी हाँ दोस्तों, आज़ादी जितनी मेहनत, जितनी कोशिशों से हमें हासिल हुई है, इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी हर एक शहरी पर बखूबी पड़ती है। ये किसी एक का काम नहीं, बल्कि ये मुश्तरका कोशिशों का नतीजा था और आगे भी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। ज़रूरत है तो इसकी अहमियत को समझने के लिए सिर्फ एक ख़ास दिन किसी चीज़ के लिए मुख्तस करने से बजाय हमें अपने मुल्क से हुब्बुल वतनी का इजहार हमेशा हर कदम करते रहना चाहिए।

0: इस जिम में हमने बात की मोमर शायर हलीम साबिर साहब से। उन्होंने आजादी के ताल्लुक से एक खूबसूरत नज़म कहते हुए कहा कि
1: मैं हलीम साबिर आजादी का नगमा पेश कर रहा हूँ। है जमीन आजाद अपनी, आसमां आजाद है जमीन आजाद अपनी, आसमां आजाद है। आज हम आजाद हैं, हिंदुस्तान आजाद है जमीन आजाद अपनी, आसमां आजाद है। जोश आजादी लिए उठे वतन के नौजवान, लिखी अपने खून से कुर्बानियों की दास्तां। जोश आजादी लिए उठे वतन के नौजवान, लिखी अपने खून से कुर्बानियों की दास्तां। जिनकी कुर्बानी से अपना ये जहां आजाद है, आज हम आजाद हैं, हिंदुस्तान आजाद है। सरनगुं कर डाला इस्तेमारियत की आन को, और दुभाला कर दिया जमहूरियत की शान को। सरनगुं कर डाला इस्तेमारियत की आन को, और दुभाला कर दिया जमहूरियत की शान को। आज अपने देश का पीरो जवां आजाद है, आज हम आजाद हैं, हिंदुस्तान आजाद है।
0: दोस्तों, आप अभी समाप्त फरमा रहे थे बुजुर्ग के तजुर्बे के तहत आजादी की अहमियत पर हमारी खास पेशकश। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन, और आज दिन है जुमरा। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज के दिन का आप बखूबी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आज के दिन हम आपके लिए लाते हैं खूबसूरत चुनिंदा कलाम गजल उसने छेड़ी। सुनते हैं नूरजहां की आवाज में आज का पहला कलाम।

मोहब्बत सबर के सिवा कुछ भी नहीं, मोहब्बत सबर के सिवा कुछ भी नहीं, मैं हर इश्क को इंतजार करते देखा है। सुनते हैं दोस्तों मिर्जा गालिब फिल्म से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को।

दिले नादा आखिर तुझे हुआ क्या है। अभी आप समाज फरमा रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में निहायत खूबसूरत गजल। शो की शबाब हुस्न तबस्सुम हया के साथ, शो की शबाब हुस्न तबस्सुम हया के साथ, दिल ले लिया है आपने किस किस अदा के साथ। सुनते हैं हरिहरन और अलका याग्निक को, कलाम जावेद अख्तर और मौसीकी है राजू सिंह की।

0: दोस्तों, हमारे मुल्क में एक बहुत प्यारा और खूबसूरत मुहिम जारी किया गया है जो कि वतन परस्ती से वाबस्ता है। ये मुहिम हर घर में तिरंगा हो, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम हिंदुस्तान जैसे पुरवकार मुल्क के बाशिंदे हैं और पूरे ईमान से सच्चे दिल से इसकी अजमत और मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस मुहिम के जरिया हम अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत का इजहार भी करेंगे। अपने रहायशगाहों में तिरंगा लगाकर ये हमारा औलियन फर्ज भी है कि हम अपने मुल्क की अजमत के लिए ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मेरी आप सब दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने अपने घरों में, फेसबुक प्रोफाइल में, बच्चों के ब्रेसलेट में और खवातीन अपने चूड़ियों में भी तिरंगे का इस्तेमाल करें और अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार करें। कुछ सत्रें लिखी हैं मैंने इस खास मौके पर, इसे भी मुलाहजा फरमाएं। कायम रहे आज़ादी और जश्न का मौका हो, कायम रहे आज़ादी और जश्न का मौका हो, हर घर में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा हो। हम मुल्क की मिट्टी को गुलजार बनाएंगे, हर सू यहाँ उल्फत के हम फूल खिलाएंगे। हम मुल्क की जुल्मत को साए से मिटाएंगे, ना शौक तमाशा हो ना शौक तकाजा हो, हर घर में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा हो। ये रंग जो है धानी, खुशियों की है निशानी, सर सब्ज बहारों से भारत की है कहानी। सादे रंगों की तो पुर अमन है मानी, आंखों में दिलासा हो, बातों में खुलासा हो, हर घर में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा हो।
1: जी हाँ दोस्तों, पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा है और मरकजी हुकूमत की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम भी जारी है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि बाहें फैलाकर इस मुहिम का खैर मकदम करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। बस आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ तलत सलाहुद्दीन और मैं लाई हूँ गज़ल उसने छेड़ी। फिलहाल सुनते हैं रेशमा की आवाज़ में एक नहायत ही खूबसूरत गज़ल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेशमा एक फोक सिंगर थी, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू आज भी सबों के दिलों में विराजमान है। सुनते हैं रेशमा की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल। क्यों उदासी घोलते हैं लफ्ज़ों में हम, क्यों उदासी घोलते हैं लफ्ज़ों में हम, नेमतें जब इश्क की हम पर बड़ी है।

चेहरों से पता नहीं चलता दिल के गहरे जख्मों का, चेहरों से पता नहीं चलता दिल के गहरे जख्मों का, कोई साहिल पे कड़ा क्या जाने समुंदर कितना गहरा है। सुनते हैं आज के प्रोग्राम की आखिरी गजल भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में। कलाम है कैसरुल जाफरी का और मौसीकी है भूपेंद्र सिंह की।

दोस्तों जो मैंने वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, मैं तलत सलाउद्दीन आज के लिए इजाजत लेती हूँ। मैं फिर हाजिर होंगी कुछ प्यारे नगमों के साथ, कुछ अनोखे वाकयात के साथ। यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। कुछ ही देर में आप समाप्त फरमाएंगे वेस्टर्न प्रोग्राम, जहाँ साथ होंगी प्रतिज्ञा घोष।

आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत हम बातें करेंगे, चर्चा है में आज बातें करेंगे हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के विषय में, यानी कि अंग दान, एक ऐसा दान जो किसी की जिंदगी फिर से रोशन कर सकता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे जीवन को नहीं बल्कि किसी दूसरे इंसान को भी पूरे जीवन बदल देता है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में दुनिया देखने की उम्मीद खत्म हो चुकी हो, एक ऐसा परिवार जो किसी प्रियजन के अंग के खराब हो जाने के कारण चिंता में हो, एक ऐसा मरीज जिसकी जिंदगी किसी दूसरे इंसान के एक छोटे से निर्णय पर टिकी हो, और फिर किसी का लिया हुआ एक मानवीय फैसला उसकी जिंदगी में नई रोशनी भर दे, यही है अंगदान। और आज चर्चा है में हम बातें करेंगे अंगदान क्या है, कौन अंगदान कर सकता है, और किन अंगों और उत्तकों का दान किया जा सकता है। तो आइए, तो दोस्तों बातें करते हैं इस खूबसूरत विचार से कि जीवन में हम बहुत कुछ अपने लिए जमा करते हैं, लेकिन अंगदान हमें सिखाता है कि जीवन के बाद भी किसी के काम आया जा सकता है। अंगदान का अर्थ है किसी जरूरतमंद मरीज का प्रत्यारोपण के लिए अपने अंग का या उत्तक दान करना। जब किसी व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण अंग गंभीर रूप से खराब हो जाता है और उपचार के दूसरे विकल्प प्रभावी नहीं होते, तब कई मामलों में अंग प्रत्यारोपण उसके लिए जीवन बचाने वाला उपचार हो सकता है। भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण की व्यवस्था से जुड़े राष्ट्रीय स्तर में कई प्रकार से महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। अंगदान केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं है, ये मानवता, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की भी प्रतीक है। किसी के जीवन का अंत किसी दूसरे के जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। श्रोताओं, अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर कौन कौन से अंगदान किए जा सकते हैं। किडनी, रिवर, हृदय, फेफड़े, अग्नाशय और आंत। इसके अलावा कई प्रकार के उत्तक भी दान किए जा सकते हैं, जैसे कॉर्निया, हड्डी, त्वचा, हृदय वाल्व, रक्त वाहिकाएं, नसें और टेंडन। इसका अर्थ है कि अंगदान की संभावनाएं केवल एक दो अंगों तक सीमित नहीं है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कौन सा अंग किस परिस्थिति में दान किया जा सकता है। ये चिकित्सीय स्थिति और लागू नियमों पर निर्भर करता है, लेकिन ध्यान रहे, अंगदान कोई जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला नहीं है। जीवित अंगदान के लिए चिकित्सीय जांच, उपयुक्तता, सहमति और कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन जरूरी होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए अंगदान के बारे में विचार कर रहा है, तो उसे हमेशा अधिकृत चिकित्सा केंद्र और विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी सही जानकारी लेनी चाहिए। एक अंगदाता कई लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है और एक अंगदाता से कई प्रत्यारोपण संभव हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक परिवार अपने प्रियजन को खो देता है, दुख बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उसी परिवार के निर्णय से किसी दूसरे परिवार में एक माँ को अपना बच्चा वापस मिल सकता है, एक बच्चे को अपने माता पिता का सहारा मिल सकता है, किसी युवा को अपने भविष्य फिर से दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि अंगदान को अक्सर जीवन का उपहार कहा जाता है। तो दोस्तों, अंगदान का संकल्प लेना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है अपने परिवार से उस फैसले के बारे में बात करना, क्योंकि अचानक आने वाली किसी गंभीर परिस्थिति में परिवार को पहले से पता होना चाहिए कि उनके प्रियजन की इच्छा क्या थी। इसलिए आज ही अपने परिवार के साथ बैठिए, बात कीजिए। अगर मेरे साथ कभी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें मेरे अंग किसी दूसरे की जिंदगी बचा सकते हैं, तो मैं अंगदान करना चाहूंगी। ये बातचीत आसान नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानवीय फैसला हमारी अनुपस्थिति में भी किसी की जिंदगी बचा सकता है।

तो दोस्तों भारत पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और किससे जुड़ी जानकारी के लिए नोटियो आधिकारिक माध्यम उपलब्ध कराता है। लेकिन श्रोताओं, किसी भी परिस्थिति में चिकित्सा निर्णय से पहले अधिकृत स्रोत से जानकारी जरूर लें, क्योंकि अंगदान दोस्तों बहुत ही संभल कर देख कर डॉक्टरों या अस्पतालों की जिम्मेदारी के साथ सभी भूमिका को निभा कर की जाती है, क्योंकि इसमें परिवार की, युवाओं की, स्कूल कॉलेज की और हमारी भी भूमिका होती है, क्योंकि हमें जागरूक होना होता है, सही जानकारी लेना होता है और दूसरों को भी जागरूक करना होता है। कभी आपने सोचा है हमारी ज़िंदगी खत्म होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? बिल्कुल, हमारी संवेदनाएं और किसी ज़रूरतमंद के जीवन से छोड़ी हुई उम्मीद, शायद वही सबसे बड़ी विरासत बन सकती है। अंगदान उसी विरासत का एक मानवीय रूप है, एक फैसला, किसी के लिए नई सुबह बन सकता है। तो दोस्तों, आज चर्चा है कि माध्यम से आपसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अपील करना चाहते हैं कि अंगदान के बारे में जानिए, सही जानकारी लीजिए और अपने परिवार से बात कीजिए, अपनी इच्छा के बारे में उन्हें बताइए। और यदि आप अंगदान की प्रतिज्ञा करना चाहते हैं तो केवल आधिकारिक और अधिकृत माध्यम के उपयोग करें। याद रखिए, दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का भी होता है, दान रक्त का भी होता है और दान अंगों का भी हो सकता है। कभी कभी किसी के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन एक फैसला किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज की हमारी चर्चा है यहीं समाप्त होती है। आज हमने बात की अंगदान की, एक ऐसे विषय की जो चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा होने के साथ साथ हमारी इंसानियत से भी जुड़ा है। अंगदान के बारे में सबसे ज़रूरी बात, अफवाह नहीं जानकारी, डर नहीं समझ, चुप्पी नहीं संवाद। तो दोस्तों, आइए हम अपने परिवार और समाज में इस विषय पर खुलकर बात करें, क्योंकि हो सकता है आज आपकी कही हुई एक बात किसी को अंगदान के लिए प्रेरित कर दे और कल वही निर्णय किसी अनजान इंसान के जीवन में नई उम्मीद लेकर आए। इस संदेश के साथ, बिल्कुल, जीवन अनमोल है और किसी के जीवन को बचाने की कोशिश उससे भी अनमोल। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति और आप सुन रहे थे सुरभि कार्यक्रम के सेगमेंट चर्चा है।

दोस्तों, अब सुरभि कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बढ़ते हैं पहल की ओर, और पहल में आज हम बातें करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के विषय में, किसान की तरक्की से देश की प्रगति तक। तो दोस्तों, पहल में हमारा विषय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में खेती को केवल पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई और स्वस्थ मिट्टी, कृषि यंत्रीकरण, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि से भी जोड़ना जरूरी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2007-08 में शुरू किया था। इसका मूल उद्देश्य राज्यों को कृषि और उससे जुड़ी क्षेत्रों से में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने तथा स्थानीय जरूरतों के अनुसार कृषि विकास की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। कृषि केवल गेहूं, धान या सब्जियों की खेती तक सीमित नहीं है, इसके साथ पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, कृषि प्रसंस्करण, सिंचाई, भंडारण, कृषि मशीनरी और ग्रामीण कृषि आधारित उद्यम भी जुड़े हुए हैं। RKVY की सोच यही रही है कि राज्य और हर क्षेत्र की कृषि संबंधी जरूरत एक जैसी नहीं होती।

कहीं सिंचाई की जरूरत अधिक है तो कहीं मिट्टी सुधार की और कहीं फसल विविधीकरण की तो कहीं कृषि प्रसंस्करण और बाजार से जोड़ने की। इसलिए योजना के माध्यम से राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि विकास की योजना बनाने में अधिक लचीलापन देने पर जोर दिया गया है। यानी आसान शब्दों में कहे तो स्थानीय जरूरत की पहचान, उसके अनुसार योजना और कृषि का समय विकास RKVY की मूल सोच है। RKVY की यात्रा को अगर थोड़ा पीछे जाकर समझते हैं तो 2007-08 में जब ये योजना शुरू हुई तब लक्ष्य था कृषि के विकास को गति देना और राज्यों के कृषि निवेश में प्रोत्साहित करना, और बाद में योजना में समय समय पर बदलाव भी किए गए हैं। और फिर आया वर्ष 2024 जब केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय की कई प्रायोजित योजनाओं को दो व्यापक योजनाओं के अंतर्गत पुनर्गठित करने का फैसला किया। इसमें एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि PMRKVY और दूसरा कृषोन्नति योजना यानी कि कृष्णोन्नति योजना। सरकार के अनुसार PMRKVY का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, जबकि कृषि उन्नति योजना का जो खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता पर है। तो दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में PMRKVY और कृष्णोन्नति योजनाओं को मंजूरी दी गई और सरकार ने यह भी कहा कि राज्यों को एक घटक से दूसरे घटक में धन को पुनर्वियोजन सुविधा दी जाएगी ताकि राज्य अपनी विशेष जरूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग कर सके। और इसका उद्देश्य है कि कम संसाधनों में बेहतर परिणाम, बेहतर योजना और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन करना। तो दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इसमें प्रमुख घटक शामिल है कि इसमें प्रमुख घटक के मिट्टी स्वस्थ होगी, फसल भी बेहतर होगा और साथ ही साथ मिट्टी स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों का उद्देश्य है कि मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। और किसानों के लिए संदेश बहुत सरल है कि मिट्टी को केवल जमीन न समझे, इसकी खेती इस खेती को बुनियादी समझे, क्योंकि भारत कई कृषि क्षेत्र इसी पर निर्भर है। तो दोस्तों आज जरूरत है युवा खेती को केवल पारंगत पेशे के रूप में ना देखे बल्कि इसे तकनीक और उद्यमिता से जोड़कर एक आधुनिक व्यवसाय के रूप में भी देखे। खेती बदलेगी, तकनीक जुड़ेगी, पानी और मिट्टी का बेहतर उपयोग होगा तो निश्चित रूप से कृषि का भविष्य भी मजबूत होगा। तो श्रोताओं आज के पहल में हमने जाना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY और इसके वर्तमान स्वरूप PMRKVY के बारे में। वर्ष 2007 और 8 में शुरू हुई ये पहल समय के साथ विकसित हुई है और साथ ही 2024 में इसे टिकाऊ कृषि पर केंद्रित व्यापक PMRKVY के रूप में पुनर्गठित किया गया। मुद्रा स्वास्थ्य से लेकर पानी की बचत तक, कृषि यंत्रीकरण से लेकर फसल विविधीकरण तक, कृषि वानिकी में लेकर कृषि स्टार्टअप तक इसका दायरा कृषि के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में समेटता है। किसान की प्रगति केवल किसान की व्यक्तिगत सफलता नहीं, किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश की प्रगति को नई गति मिलेगी। तो दोस्तों इसीलिए आज की हमारी पहल का संदेश है, खेतों में नई सोच अपनाएं, संसाधनों का सही उपयोग करें, तकनीक से जुड़े और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लेकर आगे बढ़े। तो दोस्तों मैं आपकी दोस्त ज्योति अब आप सभी से लेना चाहूंगी इजाजत। अब आप सुन रहे थे पहल, फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए विषय और नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। और मैं आपकी दोस्त ज्योति आप सभी से चाहूंगी इजाजत। आज का सुरभि कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: Please stay tuned for the news from Delhi in a short while from now.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती

0: मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: दिखाई देता है इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवी और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षता को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2000.

0: की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
5: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बारेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया।

0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
6: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तक, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तक तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।

गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में

0: बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হল সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান শুনছেন 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় 4:59:48। সংবাদ একটু পরেই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
3: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार अपनी मांग बदलते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश के समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शु फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्कन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शु ने कहा कि चीन भारत

0: और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्कन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा कायदा हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नामों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी और युवा और नागरिक शामिल हुए। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Both the Houses of Parliament have been adjourned sine die. The monsoon session of Parliament, which began on the 20th of last month, concluded today after having 19 sittings spread over 25 days. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the floor of the House was open, but the members did not make the fullest use of the opportunities available to them to raise the voice of the people. He, however, said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities. Repeated disruptions affect the trust and aspirations of the people.
1: Earlier, the Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business, but continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both the Houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. President Draupadi Murmu today presented the Sangeet Natak Academy Fellowships and Awards for the years 2024-25 to over 100 artists in a special investiture ceremony in New Delhi. The awards were given for making contributions towards country's performing arts, music, dance, theatre, folk and tribal arts, puppetry, traditional theatre and other allied forms. In Jharkhand, the students' protest regarding the alleged irregularities in JPSC and JSSC is continuing on its 20th day today. Students are protesting.

0: मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 5:21:24 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम उर्वशी का। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका।
1: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

कार्यक्रम उड़ान में आज बातें करेंगे लक्ष्मी सहगल की। कैप्टन लक्ष्मी सहगल भारत की स्वतंत्रता की एक साहसी महिला चिकित्सक और समाजसेविका थीं। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, में हुआ था। उनका मूल नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद फौज में शामिल हुई।

और महिलाओं के रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लक्ष्मी सहगल दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं के लिए गठित रानी झांसी रेजिमेंट की कमान संभाली। उनका उद्देश्य भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना था। उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति ने अनेक महिलाओं को प्रेरित किया। वे केवल सैनिक नेता ही नहीं थी बल्कि एक प्रशिक्षित डॉक्टर के रूप में भी लोगों की सेवा करती थी। स्वतंत्रता के बाद भी लक्ष्मी सहगल ने अपना जीवन सेवा को समर्पित रखा। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए चिकित्सा सेवा जारी रखी। विशेष रूप से उन्होंने वंचित वर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम किया। भारत सरकार ने 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके स्वतंत्रता संग्राम, चिकित्सा सेवा और सामाजिक योगदान के प्रति देश की श्रद्धांजलि थी। 23 जुलाई 2012 को कानपुर में उनका निधन हुआ। वे भारतीय इतिहास में साहस, नेतृत्व, त्याग और नारी शक्ति की प्रेरणादायक प्रतीक के रूप में आज भी याद की जाती है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति, साहस और मानव सेवा के लिए किसी व्यक्ति का लिंग या परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। अभी आप सुन रहे थे उड़ान में लक्ष्मी सहगल के बारे में। और अब कुछ फिल्मी नगमे, आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से एक नगमा। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत राहुल देव वर्मन का है।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म कर्ज से। गायक कलाकार है लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आयशुंदकला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। गायक कलाकार है आशा भोसले और अभिजीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत जतिन ललित का है।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण।

आज सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से। गायक कलाकार है कविता, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण, सोनू निगम। गीत लिखा है समीर ने और संगीत जतिन ललित का है।

उर्वशी कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते सुनते आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मीणा को आगे दीजिए। आखिरी गीत है सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म बॉर्डर से। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत अनु मलिक का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर

मीडियम पे 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 6:10:16 हुए हैं। वक्त हो रहा है हिंदी कार्यक्रम वार्ता का। आज का विषय है अंगदान महादान जागरूकता चुनौतियां और समाधान। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका।

अंगदान मानवता की सबसे महान सेवाओं में से एक है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उपयोगी अंग किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन प्रदान करते हैं तो यह केवल दान नहीं बल्कि महादान बन जाता है। आज हृदय, गुर्दे, यकृत, फेफड़े तथा आंखों के कॉर्निया जैसे अंगों के प्रत्यारोपण से अनेक गंभीर रोगियों को नया जीवन मिल सकता है। इसलिए अंगदान को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में लाखों लोग विभिन्न अंगों के प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी ओर अंगदान को लेकर जानकारी और जागरूकता की कमी के कारण अनेक संभावित अंग जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाते। कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि अंगदान केवल किसी विशेष वर्ग या उम्र के लोग ही कर सकते हैं। वास्तव में अंगदान की पात्रता व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय मूल्यांकन पर निर्भर करती है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, सामाजिक संगठनों और मीडिया के माध्यम से अंगदान के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। जागरूकता अभियान, सेमिनार, रैली, पोस्टर, नाटक और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जा सकता है।

अंगदान को बढ़ावा देने में कई चुनौतियां सामने आती हैं। जानकारी का अभाव, बहुत से लोगों को अंगदान की प्रक्रिया और नियमों की जानकारी नहीं होती। भ्रांतियां और अंधविश्वास, अंगदान को लेकर कई सामाजिक और धार्मिक गलत धारणाएं मौजूद हैं। परिवार की झिझक, मृत्यु के समय परिवार भावनात्मक स्थिति में होता है, जिससे अंगदान का निर्णय कठिन हो सकता है। चिकित्सकीय एवं लॉजिस्टिक चुनौतियां, अंगों को समय पर सुरक्षित रूप से प्राप्त करना, संरक्षित करना और जरूरतमंद मरीज तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम जागरूकता होने के कारण गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में अंगदान से संबंधित जानकारी अपेक्षाकृत कम पहुंच पाती है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, स्वास्थ्य विभाग, अस्पतालों और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए। अंगदान के संबंध में वैज्ञानिक और प्रामाणिक जानकारी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मियों की सहायता से परिवारों को अंगदान की प्रक्रिया समझाई जा सकती है।

स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जाना चाहिए। साथ ही अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

युवा वर्ग अंगदान जागरूकता अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। युवा स्वयं सही जानकारी प्राप्त करके अपने परिवार और समाज के लोगों तक उसे पहुंचा सकते हैं। वे जागरूकता कार्यक्रमों, पोस्टर प्रतियोगिताओं, भाषणों और सामाजिक अभियानों में भाग लेकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं।

अंगदान वास्तव में जीवन के बाद भी जीवन देने का संकल्प है। एक व्यक्ति के अंग कई जरूरतमंद लोगों के जीवन में आशा के किरण बन सकते हैं। आवश्यकता केवल सही जानकारी, जागरूकता और संवेदनशील सोच की है।

हमें अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना होगा और समाज में यह संदेश पहुंचाना होगा कि अंगदान केवल दान नहीं, किसी के जीवन का वरदान है। आइए जागरूक बने, अंगदान का संकल्प लें और मानवता की सेवा करें। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम में वार्ता, विषय था अंगदान महादान, जागरूकता, चुनौतियां और समाधान। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आइए सुनते हैं गीत गजल का कार्यक्रम गुलगुलसन। आपके साथ मैं हूँ आपका दोस्त रोशन मुरारका। सबसे पहले आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

आइए कार्यक्रम की आखिरी गजल सुनिए, लता मंगेशकर, आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज में। और इस गजल को सुनते सुनते आपके दोस्त रोशन मिराका को कार्यक्रम कुल गजल समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सुनिए आखिरी गजल, फिर मिलूंगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19%, जबकि राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा अहिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आंधी चलने की आशंका है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30:40 हुए हैं। वक्त हो रहा है पत्रिका कार्यक्रम दर्पण का। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका। सबसे पहले एक नजर विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद मरीजों को जीवन देने के महत्व को समझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अंगदान को अक्सर महादान कहा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति के दान से कई लोगों के जीवन को बचाने या बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अंगदान के माध्यम से हृदय, गुर्दे, यकृत, फेफड़े और आंखों के कॉर्निया जैसे अंगों का प्रत्यारोपण जरूरतमंद मरीजों में किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ टिश्यू भी चिकित्सकीय रूप से दान किए जा सकते हैं। हमारे समाज में अंगदान को लेकर कई भ्रांतियां और गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग अंगदान के प्रक्रिया, पात्रता और कानूनी नियमों के बारे में जानकारी नहीं रखते, इसलिए परिवार और समाज के बीच सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। अंगदान केवल किसी अंग को दान करना नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन और आशा देने का संकल्प है। हमें स्वयं से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अपने परिवार के साथ अंगदान की इच्छा पर चर्चा करनी चाहिए। अंगदान करें, जीवन बचाएं, मृत्यु के बाद भी मानवता के काम आए। ये थी एक नजर।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

आइए अब खेल जगत का वक्त हो रहा है। आज हम बातें करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट की प्रेरणादायक खिलाड़ी हेमलता काला के बारे में। हेमलता काला भारतीय महिला क्रिकेट की एक प्रसिद्ध पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने ऐसे समय में भारतीय महिला क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया जब वे महिलाओं के क्रिकेट को आज की तरह व्यापक लोकप्रियता और सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। अपनी मेहनत, प्रतिभा और संघर्ष के बल पर उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई। हेमलता काला का जन्म 15 अगस्त 1975 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की मध्यम गति की गेंदबाज थी। इस कारण वह एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण रही। हेमलता काला ने

लगभग एक दशक तक भारतीय महिला क्रिकेट की सेवा की। उन्होंने भारत के लिए 7 टेस्ट और 78 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले तथा एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 503 रन बनाए। उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 110 रन रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक और 3 अर्धशतक बनाए। उनके बल्लेबाजी में धैर्य और तकनीक दिखाई देती थी। वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेली और 1023 रन बनाए। गेंदबाजी करते हुए उन्होंने वनडे में 8 विकेट भी हासिल किए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा हिमलता काला ने घरेलू क्रिकेट में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और रेलवे का प्रतिनिधित्व किया। घरेलू स्तर पर उनके निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टीम में जगह बनाने में सहायता की। उनका क्रिकेट करियर केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने इस दौर में भारतीय महिला क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया जब खिलाड़ियों को सीमित संसाधनों और कम मीडिया कवरेज के बीच अपने खेल को आगे बढ़ाना पड़ता था। क्रिकेट से जुड़े अपने अनुभव का उपयोग करते हुए अमृता काला ने बाद में क्रिकेट प्रशासन और कोचिंग से संबंधित भूमिकाओं में भी योगदान दिया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और महिला क्रिकेट के विकास में अपनी भूमिका निभाई। वह नई पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों के लिए अनुभव और मार्गदर्शन का स्रोत बनी। हिमलता काला का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि लगातार मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और संघर्ष से प्राप्त होती है। उन्होंने ऐसे दौर में भारतीय महिला क्रिकेट को अपना योगदान दिया जब इस खेल को आज जितना सम्मान और पहचान नहीं मिलती थी। उनकी उपलब्धियां उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत लगातार जारी रहे तो कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता हासिल की जा सकती है। हेमलता काला भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। एक सफल बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने भारतीय टीम के लिए योगदान दिया। उनका खेल जीवन संघर्ष और अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। हेमलता काला का जीवन संदेश देता है कि प्रतिभा को मेहनत का साथ मिले तो हर चुनौती को सफलता में बदला जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे खेल जगत में क्रिकेट खिलाड़ी हेमलता काला के बारे में।

आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हरियाली और रास्ता से। वह कलाकार है लता मंगेशकर और मुकेश। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म तीन देवियां से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और साथी, गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने और संगीतकार SD बर्मन।

आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज में फिर सिलसिला से। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार शिव हरी। कार्यक्रम का आखिरी गीत है, गीत सुनते रहिए। और फिलहाल आपके दोस्त रोशन मृणाल का कोई है आ गया दीजिए, फिर मिलूंगा। नमस्कार।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती।

तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल से स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र

0: जी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
3: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने

0: आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं

0: ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026, शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण

0: बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर बहल, सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। दो दिनों तक ये चला, देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा?
1: ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली में कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया, और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया, और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उनको कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर।
0: बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य हैं। डॉक्टर बहल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको अभी तक याद है?
1: एक्चुअली 3 बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल, इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम ICMR कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए ICMR क्या कर रहा है। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये और ICMR इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही। तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक, जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे, वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा उन्होंने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है, और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है, और ना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हेपेटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं, किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है, और हम किस तरह से उसके ऊपर नए नए ट्रीटमेंट्स कैंसर के ला रहे हैं, और पूरे विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा।
0: बिल्कुल, आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत का अवसर मिला, क्या आपका मानना है कि ऐसी

0: पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं।
1: जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे, उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। यही नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
0: और इस काम में ICMR, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रेसिजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं। क्या AI और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है?
1: बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं, अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में, जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक में खास तौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे। जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे UPI को यूज करके जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें अपना सिक्का जमाया पूरे विश्व में, इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध है वो हमारे पास भी उपलब्ध है।
0: डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। ICMR इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में, किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है?
1: क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रहे हैं। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस में अब डेंगू जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है, डेंगू होता है, वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है, क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम

0: लोगों को बाहर काम ना करना पड़े, इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं?
1: आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी आईसीएमआर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है।
0: बिल्कुल, ये इंटरवेंशंस जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका इलाज, जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती हैं उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से, एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें, और दूसरा कि उसके प्रभावों को कम करें।
1: डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूं, तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
0: तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है, ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें जानने की कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखिए। अपने को इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें, और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा, आपके पास और भी बहुत संसाधन हैं, जैसे कि आप एआई अपने किसी पेरेंट्स की मदद से या अपने किसी बड़े की मदद से भी एआई के जरिए भी सीख सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। तो आप अपने सारे रिसोर्सेस को यूज करके अपने मन को इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आगे जाके आपका वैज्ञानिक बनने का जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा।
1: डॉक्टर राजीव बहल, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और शाइन के बारे में जानकारी देने के लिए, देश के युवा बच्चे कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शाइन 2026, युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं आईसीएमआर महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
3: This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on government's roadmap for a self-reliant and globally competitive nuclear energy ecosystem. The participants are Rahul Mahajan, senior journalist, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent.
4: India is preparing for a major expansion of nuclear energy as it moves towards its goal of Viksit Bharat 2047. With that target in mind, a target of 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047 is the focus, and not only on large reactors but also on the small modular reactors. Indigenous technology, private sector participation and the long-term utilization of thorium. In today's insights, we are joined by senior journalist Mr. Rahul Mahajan to take a look on India's nuclear roadmap, the role of SMRs and the opportunities created by the Shanti Act, and how the nuclear energy can strengthen India's energy security and technological self-reliance. Mr. Mahajan, welcome to Akashwani News.

0: और अब समाचार विस्तार से। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत द्वारा चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने को लेकर चीन और रूस ने इस वर्ष भारत के समर्थन की पुष्टि की है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में भाग लिया। एक रिपोर्ट।
2: राजदूत शू ने कहा कि चीन, भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को गहरा करने और वैश्विक मामलों में समूह की भूमिका को मजबूत करने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि करते हुए समूह को व्यवहारिक सहयोग और ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। चर्चा में समावेशिता, बहुपक्षवाद और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर जोर देते हुए एक लचीली और टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की 2026 के ब्रिक्स की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बे सोलोव न्यांती के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री न्यांती को बधाई दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में केन्या की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉ मोसेस वेंचगुला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और केन्या के बीच ऐतिहासिक जनसंपर्क संबंधों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में अशांति ने कश्मीरी प्रवासियों द्वारा पाकिस्तान के प्रायोजित आतंक को उजागर करने के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों ने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। बेल्जियम में कश्मीरी प्रवासी समूहों ने पीओजेके की स्थिति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। इटली में बिलोंगना में प्रवासियों के बड़े प्रदर्शनों की सूचना मिली जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई हत्या और कथित दुर्व्यवहार की निंदा की गई। ब्रिटेन में भी पाकिस्तानी राजनयिक परिसरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से आज प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि कब्जे वाले क्षेत्र में अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा लगभग 100 लोगों को मार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन

0: एससी की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहरा है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। एक रिपोर्ट।
1: सुरक्षा परिषद की आतंकवाद संबंधी विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष नवंबर में हुए इस हमले की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी AQIS की मानी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। संगठन बड़े समूहों के बजाय छोटे और अलग अलग गुटों के जरिए काम कर रहा है तथा उसने अपने लॉजिस्टिक और वित्तीय नेटवर्क मजबूत किए हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि AQIS बांग्लादेश का इस्तेमाल वहां अपने आतंकी सेल स्थापित करने के लिए करने की कोशिश कर रहा है। टीम ने दक्षिण एशिया में आतंकवादी खतरों के बढ़ने की आशंका जताई है। इससे पहले फरवरी में जारी टीम की एक रिपोर्ट में लाल किले के पास हुए हमले को जैश ए मोहम्मद से जोड़ा गया था। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास राग़ची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है। विदेश मंत्री अराग़ची ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में खुफिया विफलताओं के कारण इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा बार बार गलत अनुमान लगाने का आरोप लगाया। ये टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है और वो इसे बरकरार रखेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये रणनीतिक जलमार्ग अवरुद्ध है और ईरान की शर्तें स्वीकार किए जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने आज अपने महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश के राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया। राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होंगे। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के कुल निर्यात में जुलाई में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति का मुद्दा वैश्विक स्तर पर पहुंचा। कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान की कार्रवाई और अत्याचारों को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण के दावे को खारिज किया। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India's exports registered robust growth of over 13% in July. Unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir goes global as Kashmiri diaspora exposes Islamabad's crackdown and atrocities. A UNSC report attributes the Red Fort blast in Delhi to an Al-Qaeda offshoot. Iran rejects US President Donald Trump's claim of having total control over the Strait of Hormuz. And in Commonwealth Fencing Championship, Indian team dominates with 35 medals comprising 13 gold. country's exports, including merchandise and services, registered a robust growth of

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में

0: संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
1: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ. जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
2: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा,

हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है